गल है जी, यादों पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैनू ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैनू याद नहीं, पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी वो पल मैनू आज भी याद है। इन्ना सोना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

एक दिन नटखट नंदलाला गोपाला माखन चोरी की लीला करते हुए मटकी तोड़कर माखन खाते हुए पकड़े जाते हैं और माता यशोदा के सामने लाए जाते हैं। महाकवि सूरदास जी के शब्द में सुनिए।

कन्हैया मुस्कुराकर बोले, हाँ मैया, मैंने ही माखन खाया है। ऐसी बातें सुनकर माँ यशोदा कहती है कि अपने घर में क्या कमी है जो तू दूसरों के घर में जाकर माखन चुराता है। दूसरों की मटकी तोड़ने की तुझे क्या आवश्यकता। भगवान मैया को मटकी और माखन का रहस्य कैसे समझा।

यशोदा मैया आश्चर्य से उन्हें देखने लगती और कहती हैं, कन्हैया क्या तू सच बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्वाल बाल के रूप में कई देवता भी थे। माँ तू तो बड़ी भोली है ना, तू उन्हें पहचान भी ना सकी। मैं तुझे सब सच सच बताता हूँ।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230-30 दास ब्रेडफोर्ड 7230-30।
3: Sunrise and music. Here's what's happening across the region over the coming days. First in Bradford, Jim Moyer. Neo Fauna continues at Cartwright Hall, with wildlife-inspired artwork running through to August. Also in Bradford, Miss Saigon opens at the Alhambra Theatre from May 5th, bringing the major musical production to the city.

0: कफ्सन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: कुल्ला नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 723030 ब्रैडफोर्ड 723030
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन हैं। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442।

0: कफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
3: Here's what's happening across the region over the coming days. First in Bradford, Jim Moyer. Neo Fauna continues at Cartwright Hall, with wildlife-inspired artwork running through to August. Also in Bradford, Miss Saigon opens at the Alhambra Theatre from May 5th, bringing the major musical production to the city. Over in Calderdale, the Royal Photographic Society's Analogue 10 continues at Dean Clough in Halifax. Also at Dean Clough, Fur and Feathers continues through May. In Leeds, I, Daniel Blake, is at Leeds Playhouse, running through to 9th of May. In Manchester, Bank of Dave, the musical, is at the Lowry in Salford, running from 2nd to 16th of May. Over in East Lancashire, the Don Banks Afternoon Variety Show takes place at Darwin Library Theatre on 6th of May. And finally, in Milton Keynes, Al Murray, All You Need Is Gov, comes to Milton Keynes Theatre on 10th of May. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: नफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: एम जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30, दास ब्रैडफोर्ड 7230 30।
4: Sunrise and music. It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 FM स्टूडियो पर और 100.6 FM पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है और DAB पे ब्रेडफोर्ड लीड्स हैलिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नले डार्विन नेल्सन अक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में आप बआसानी सुन सकते हैं और अगर आप जनाब एप्पल स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पे भी जाएं तो सुन सकते हैं और अगर आप वेबसाइट पे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं तो सनराइज रेडियो www.sunriseradio.fm पर आप सुन सकते हैं और बहुत जल्द आप ढाबी में भी सुन पाएंगे। तो दोस्तों आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। तो दोस्तों राउंड आउट न्यूज से पहले आप एबी को सुन रहे थे 9 और 11 के दरमियान। यकीनन आपने उनका प्रोग्राम एंजॉय किया होगा और दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक। मिले जुले गीत होंगे और आपकी डेडिकेशन होगी। तो चलेंगे आप सुनेंगे कमर्शियल, कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे इवेंट्स डायरी के आपके शहर में और आपके गिर्दनवा में क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताया जाएगा थोड़े और छोटे लफ्जों में। तो उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, बल्कि उसके बाद आप गाना सुनेंगे, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद इवेंट्स डायरी, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है गाने के बाद। तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं कमर्शियल।
1: Sunrise Radio.
2: I always listen to Sunrise

0: और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
1: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप जो सुने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब अगले गीत की जानिब चलते हैं। मस्ती भरा गीत है, आप सभी की नजर करना चाहेंगे। और चौधरी मुजफ्फर साहब, फोन करने का शुक्रिया जनाब, आपके नाम करेंगे ये गीत, आपके दोस्तों के नाम करेंगे। और अब्दुल कयूम साहब फ्राइजिंग हॉल से आपने भी फोन किया, शुक्रिया फोन करने का जनाब। और आपने कहा कोई सदाबहार पुराना गीत सुनाना, तो जरूर सुनाएंगे थोड़ी देर के बाद। फिलहाल आने वाले मस्ती भरे गीत से दिल बहलाइएगा। मेरी जानिब से गुलाम भाई और दीगर सभी दोस्तों के नाम ये मस्ती भरा गीत।

0: तो अभी आपने बहुत ही प्यारा सा मस्ती भरा गीत सुना। अब चलते हैं जनाब, कमर्शियल का टाइम भी हो गया है और कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराने गीत की बारी आती है। अब्दुल कय्यूम साहब राइजिंग हॉल से आपने जनाब फरमाइश कर रखी है कि कोई पुराना गाना लगाना, तो जनाब अब पुराना गीत आपके लिए लगाएंगे क्योंकि एक पुराने गीत का वक्त आ गया है जनाब। तो ज़रूर आपके लिए और आपकी जन्म से आपके दोस्तों के नाम करेंगे, चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम करेंगे, हीरा खान साहब फ़ोन करने का शुक्रिया जनाब आपके नाम भी करेंगे और आपकी जानिब से आपके दोस्तों के नाम भी करेंगे, स्पेशली जनाब आपके तारिक जुल्फी साहब हैं उनके नाम भी करेंगे और उसके बाद जनाब ग़ुलाम भाई आपके नाम, सफ़ीउल्ला भाई आपके नाम और चौधरी मुजफ्फर साहब स्पेशली आपके नाम और जनाब जावेद मीर भाई और महबूब अलाई साहब और चौधरी मनीर साहब चक्की वाले उनके नाम भी करेंगे और दीगर जितने दोस्त इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं उनके नाम भी करेंगे। तो जनाब आप सभी जो हैं इस वक्त सन्ना रेडियो को सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप सभी के नाम ज़रूर करेंगे गीत को और कोशिश कर रहे हैं कोई अच्छा सा प्यारा सा गीत जो है वो ढूंढ कर आपके लिए ज़रूर प्ले किया जाए। तो चलेंगे जनाब कमर्शियल की जानेब और कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे और इसी गीत को साइमा जी आपके नाम भी करेंगे, लेकिन कमर्शियल पे जाने से पहले जनाब टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 11:45 यानी कि 11:45। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानेब, कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत होगा, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।
2: नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रेडफोर्ड 7230300।
4: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
5: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
4: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
5: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
6: द क्लासिक फ्लैशबैक इज ब्रॉट टू यू बाय चाचा ज्वेलर्स ब्रैडफोर्ड। चूज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ ज्वेलरी। चाचा ज्वेलर्स 97-99 Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 9.

जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। लता जी और रफी की आवाजों में दोस्तों आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। सुल्तान महमूद साहब शुक्रिया फोन करने का जनाब, सुल्तान महमूद कराची वाले जनाब। तो आप सुन रहे हैं प्रेम को, तो जनाब आपने अहमद रुश्दी की आवाज में गाना जरूर सुनना चाहा तो जरूर प्ले करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो जनाब आप अपने दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहते हैं जिनमें तारिक जुल्फी साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब, जनाब महबूब अल्लाही साहब और दीगर तमाम दोस्तों के नाम आप गीत सुनना चाहते हैं, तो आपके दोस्तों के नाम करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप भी और आपके दोस्त भी इस गीत को पसंद करेंगे। और सुल्तान महमूद साहब बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, प्रोग्राम को सुनने का, पसंद करने का। अभी थोड़ी देर में आप घर में चले जाएंगे जनाब, गाड़ी पार करके अभी गाड़ी में सुन रहे थे तो अच्छा लगा आपसे बात करके हमेशा की तरह। तो सदा सलामत रहें हमारी दुआ है जनाब। और यही गीत नज़र करना चाहेंगे जनाब प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी करेंगे। कोई ख़ास गीत नहीं है, छोटा सा गीत है, बड़ा अरसा हुआ इसको प्रोग्राम में शामिल नहीं किया तो सोचा चलिए इससे भी आज दो दो आजकार लेते हैं। और दीगर तमाम दोस्तों के नाम भी करेंगे। मोहम्मद अकरम साहब फ़ोन करने का शुक्रिया जनाब, आपके नाम भी करेंगे इस गीत को। और तारिक जुल्फी साहब आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया जनाब। अभी तो गाना आपके नाम आ रहा है जनाब सुल्तान महमूद की तरफ से, बाद में आपके लिए ज़रूर कोई गीत प्ले करेंगे। तो जितने दोस्त इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। साइमा जी आपके नाम भी करते हैं।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और अनुदा पडवाल उदर नारायण की आवाजों में नदीम मंसूर साहब, फोन करने का शुक्रिया जनाब। जिस गीत की, पुराने गीत की आपने फरमाइश की, अगले आवर में जरूर लगाएंगे आपकी जानिब से। बड़ा प्यारा गीत है, अच्छा कि याद दिला दिया आपने, जरूर लगाएंगे। और अब दोस्तों टाइम जो है 1 मिनट कुछ सेकंड्स हैं, तो हम चाहेंगे आप ये म्यूजिक सुने। मेरी बातें सुनने के बजाय ये म्यूजिक सुने तो बेहतर रहेगा जनाब।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे महातब है। और दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप साथियों ने पसंद किया होगा। कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे प्यारे और म्यारी गीत पेश किए जाएं। अगर आप कोई गीत सुनना चाहते हैं, किसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहते हैं, तो जनाब आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274306666। सोनिया बहन, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बर्मिंघम में आप हमें सुन रही हैं। आपने कुमार सानू की आवाज में कोई गीत सुनना चाहा तो थोड़ी देर के बाद जरूर प्ले करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और ये हिट ऑफ द आवर का गीत जो है, ये गुलाम भाई जो है उनका स्टाफ इस गीत को बहुत पसंद करता है, उनके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त संडा रेडियो की निश्रियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का आगाज इस हिट ऑफ द आवर के साथ, आप तमाम दोस्तों के लिए जो इस वक्त संडा रेडियो की निश्रियात को सुन रहे हैं।
1: Hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: जी दोस्तों अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों टाइम चेक कर लेते हैं
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक
0: जी दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:14 यानी कि 14:12 और चलते हैं अब जनाब कमर्शियल की जानिब कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा गुलाम भाई शुक्रिया फ़ोन करने का हीरा खान साहब शुक्रिया फ़ोन करने का आप दोस्तों के नाम होगा गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम होगा और इसी गीत को प्यारी बहना सादिया जी हाजरा जी आपके नाम भी करेंगे और इसी गीत को शाहीन बहना आपके नाम भी करेंगे और इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं कमर्शियल कमर्शियल के बाद गीत गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

खुदा गवाह फिल्म से लिया हुआ गीत जनाब कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाजों में आपने ये गीत सुना। और सोनिया बहन बर्मिंघम में आप सुन रही हैं, आपने कहा कि कुमार सानू की आवाज़ में कोई गीत आप सुनना चाहती हैं, तो आने वाला गीत जो है ये अनुरा पडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में आपके नाम करूंगा और इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद जनाब इसी गीत को महमूद भाई, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे और आपके साथ साथ इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम के नाम जनाब, जिनमें इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, हुमैर, बाबर, इफराज आपके नाम भी करेंगे। और इसी गीत को गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम करेंगे और नवीद भाई आपके नाम भी करेंगे। और इसी गीत को मूना जी आपके नाम भी करेंगे।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, दो प्यार भरी आवाजों में अनुदा पडवाल और कुमार सानू की आवाजें थी। और सोनिया बहन, आप बर्मिंघम में सुन रही थी, कुमार सानू की आवाज में आपने गीत सुनना चाहा था। उम्मीद रखता हूं का ये गीत जो मैंने प्ले किया आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, अब वक्त जो है वो हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है। मुकद्दस बेटा, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके लिए भी ज़रूर कोई गीत प्ले करूंगा थोड़ी देर के बाद। तो चलते हैं दोस्तों, कमर्शियल सुनते हैं। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम, इसको इंजॉय कीजिएगा।
1: 24 hours a day. Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
3: Kullo nafsin zaikatul maut.
4: Muslim funeral service mein kafan, dafan, phoolon ka intezam Islami shariat ke ain mutabik ghusl e mayyit ke liye aurat aur mard maujood hain. Top quality granite marble ke headstones aur full cover ko 30 saal ki guarantee ke saath banwane ke liye bhi Muslim funeral service ka naam yaad rakhe. Muslim funeral service, 4 Darfield Street of Lumland, Bradford 1. Telephone 7230 30, that's Bradford 7230 30.

मदहोश तेरी आंखें। उधर नारायण की आवाज में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना, और अब जनाब एक और प्यारा सा गीत आपके लिए पेश करते हैं, वो भी इसी तरह का कुछ है, मदहोश दिल की धड़कन। तो जनाब ये भी सुन लेते हैं, क्यों वो गाना लगाया तो ये गाना याद आ गया। तो चलिए ये गाना भी मेरी तरफ से आप सभी सुनने वालों के नाम करते हैं।

0: जी दोस्तों, अभी आपने लता जी और कुमार सानू की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दोस्तों, इस उम्मीद के साथ पेश किया था कि आप सभी एंजॉय करेंगे। और अब चलते हैं जनाब, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 12:44, यानी कि 12:44। तो जनाब चलते हैं अब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा जनाब, आप सभी दोस्तों के नाम करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप सभी एंजॉय करेंगे। लेकिन ये गीत जो है इसकी हमें स्पेशली फरमाइश की थी जनाब नदीम मंसूर साहब ने, तो वो काम पे भी हैं और साथ में जो है रेडियो को भी सुन रहे हैं, तो वो उनकी पसंद पे ये गीत में, वैसे भी तो दिल कर रहा था इस गीत को मैं आप दोस्तों के लिए पेश करूं, लेकिन इन्होंने याद दिला दी कि आप तो पेश करने से रहे कासिर रहे, लेकिन आई आपको चलाना पड़ेगा। तो नदीम मंसूर भाई, आप की जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम करूंगा इस गीत को। और सोबत भाई रीड से आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे। लगता है सोबत भाई आप इस वक्त जो है ना, ये जो तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं ना, बशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, आप वहाँ मौजूद हैं दुकान पे। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आप वहाँ दुकान पे मौजूद हैं। तो जनाब अगर ये मेरा जो वहम समझे या शक समझे अगर ठीक है तो जनाब वेलकम देर। और आप हमेशा दो से पहले आ जाते हैं उस शॉप पे ताकि मेरी आपसे मुलाकात ना हो पाए, तो जनाब अच्छी बात नहीं, आप कभी दो के बाद आइएगा ना। तो एनीवे, तो ये गीत सोबत भाई आपके नाम भी करेंगे और आपके साथ साथ बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली के नाम भी करेंगे और दीगर दोस्तों के नाम भी करेंगे। और इसी गीत को और हैं हमारे मोहम्मद बशारत भाई, उन्होंने भी फ़ोन किया, उनके नाम भी करेंगे जनाब। और महमूद भाई आपके नाम भी, हीरा खान, तारिक जुल्फी साहब, ग़ुलाम भाई आपके नाम भी करेंगे और सफ़ीउल्लाह भाई आपके नाम भी करेंगे। और वाजिद भाई अड्डस्वीर से आपने भी फ़ोन किया, आपके नाम भी करेंगे जनाब। और आपके साथ साथ यानी कि तारिक जुल्फी साहब हैं, उनके नाम भी, और मोहम्मद अकरम साहब, आप भी पुराने गीत पसंद करते हैं, आपके नाम भी करेंगे। और चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम भी करेंगे, और अब्दुल कयूम साहब जो हैं फ्राइजिंग हॉल से, उनके लिए भी करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद रफ़ी साहब की आवाज़ में सदाबहार गीत नदीम मंसूर साहब की फरमाइश पे आप सभी सुनने वालों के नाम।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

जी दोस्तों, अभी आपने मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सोज भरा गीत सुना और इसकी फरमाइश हमें की थी नदीम मंसूर साहब, आपने आपकी फरमाइश हमने पूरी कर दी। और जनाब इस वक्त बाबर शाह पे बशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली के अलावा और दीगर दोस्त भी बैठे हुए हैं, आरिफ भाई हैं तो उनके नाम भी करते हैं। और बाश भाई, आज आपकी सालगिरह है जनाब, आज आपकी बर्थडे है, तो क्योंकि आप थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे अगले आवर में लगाता कोई गीत, लेकिन फिलहाल क्योंकि माहौल को थोड़ा बदलते हैं, थोड़ा सोच भरा हो गया है, ये गीत आप सभी दोस्तों के नाम करते हैं। और बशारत भाई, बाश भाई, आप की बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू यू। और सभी सुनने वालों के नाम, चौधरी मनीर साहब चक्की वाले जनाब वो भी फोन कर रहे हैं, उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कुमार सानू और अनुराधा पडवाल को।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सामना रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे और कोशिश होगी आप दोस्तों के लिए ये आवर जो आखिरी आवर है इसमें भी अच्छे प्यारे और म्यारी गीत आप दोस्तों के लिए पेश करूं। तो दोस्तों चलते हैं अब प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का जो गीत है ये गुलाम भाई का फेवरेट है और उनके नाम करेंगे, उनकी जानिब से उनके स्टाफ के नाम करेंगे। और हमारी प्यारी बहना जीत कौर आप भी सुन रही हैं, आपके नाम भी करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा। और चौधरी मनीर साहब चक्की वाले आपके नाम भी करेंगे और स्पेशली जनाब सिकंदर आपके नाम करेंगे। आज आप छुट्टी पे हैं जनाब, बाबर शाह पे छोड़ा हुआ है दोनों भाइयों को, बशारत अली को और आरिफ अली को। आज आप मज़े कर रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं, पता नहीं शॉपिंग के लिए निकले हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं। तो जनाब ये हिट ऑफ द आवर का गीत आपके नाम भी करूंगा, अपनी छुट्टी को एंजॉय कीजिएगा। ये गीत तो थोड़ा सोच भरा है लेकिन इंजॉयबल है, तो आप के नाम करेंगे। और आपके साथ साथ प्यारी बहना सादिया जी, अजरा जी आपके नाम भी करेंगे और इसी गीत को साइमा जी आपके नाम भी करेंगे और साथ में शाइन बहना आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद मिलते हैं।
1: Hit of the Hour brought to you in association with National Property Lawyers, one trusted team for your property and legal needs. Call 01274 559 565.

0: जी दोस्तों साथियों, अभी आपने इट ऑफ द आवर सुना, यकीन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:14, यानी कि 1:14 और इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल का टाइम हो गया है। और कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा जनाब, वो गीत होगा चौधरी आसिफ रियासत साहब, आपके नाम होगा, शुक्रिया फ़ोन करने का मेरे भाई। और उसके बाद अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग हॉल से आपने जिस गीत की फरमाइश की वो यहाँ नहीं है, आप दोबारा फ़ोन कीजिएगा, कोई और फरमाइश कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके लिए प्ले करूँगा। और ये गीत मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम होगा।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना अनुराधा पटवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में। जनाब अब्दुल क्यूम साहब फ्राइजिंग हॉल से आपने फ़ोन किया, जनाब आपने कहा आपने ये गाना सुना है, तो जनाब आपकी पसंद का गीत सदाबहार पुराना गीत अभी प्ले करता हूँ आपके लिए। और आपके साथ साथ चौधरी आसिफ अलिया साहब, आपके नाम जीत कौर बहना, आपके नाम चौधरी मनीष साहब चक्की वाले, आपके नाम और जनाब हमारे हीरा खान साहब और जनाब नदीम मंसूर साहब और जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब, उनके नाम भी करेंगे और जनाब सभी सुनने वालों के नाम करेंगे। तो चलते हैं और इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे, तो सुनते हैं रफ़ी साहब और सुमन किरणपुर की आवाज़ों में ये सदाबहार गीत।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

दोस्तों को, सब सुनने वालों को सलामत करते हैं और उनके लिए गीत सुनना चाहते हैं और होना चाहिए पंजाबी में। तो जनाब गुरदास मान की आवाज़ में छल्ला आप दोस्तों को सुनाता हूँ, आप की नज़र करता हूँ, आपकी जानब से आपके दोस्तों की नज़र करता हूँ। चौधरी फिराज साहब शुक्रिया फ़ोन करने का, प्रोग्राम में शमूलियत का। और इसी छल्ले को जनाब नज़र करना चाहूँगा प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी, और आपके साथ साथ इसी को साइमा जी आपके नाम भी करूँगा। और इसके साथ ही जनाब इस वक्त सुन रही हैं सहेलियाँ काम भी कर रही हैं, नजमा साहबा हैं, इफ़त हैं, नाजिया हैं, हमीदा हैं, रबीना, बुशरा, इकरा, ताजीम, जायदा और साइमा हैं, उनके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे थे। गुलाम भाई आपके पूरे स्टाफ के नाम ये करेंगे और नवीद भाई आपके नाम भी। और इस वक्त बाबर शाह पे दो शहजादे सुन रहे हैं, बिशारत अली और आरिफ अली, उनके नाम भी, और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी। और ऑफकोर्स सिकंदर अली, आप शायद गाड़ी में ही हूँ, अभी ड्राइव कर रहे हूँ, आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे जनाब गुरदास मान की सुरीली आवाज़ में ये छल्ला। और हमारे प्यारे दोस्त चौधरी मनीर साहब आज माशाल्लाह आज काफ़ी सुन रहे हैं रेडियो को, तो उनके नाम भी करेंगे और चौधरी मुजफ्फर साहब के नाम भी करेंगे और दीगर जो दोस्त हैं सभी दोस्तों के नाम, और चौधरी आसिफ रियाज साहब आपके नाम भी, और नदीम मंसूर साहब आपके नाम भी करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गुरदास मान की आवाज़ में छल्ला, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।

0: कफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: My favorite radio station, Sunrise Radio.
5: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise

0: दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा छल्ला सुना और इसके साथ ही दोस्तों वक्त हमें बता रहा है कि जोहर की अजान का हो चुका है, तो चलते हैं सुनते हैं जोहर की अजान।
1: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही दोस्तों चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:45, यानी कि 1:45 past 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद एक सदाबहार पुराना गीत होगा। दो गीत हैं जो मैं प्ले करना चाहता हूं और अब सोच में पड़ा हुआ हूं कौन सा गीत प्ले करूं कौन सा ना करूं। तो मैं तो सोच रहा हूं कि दोनों ही प्ले कर दें जनाब, जो है वो ये ना मलाल रहे कि मैंने ये गाना प्ले करना था वो प्ले कर दिया या ये। तो दोनों नज़रों में हैं तो दोनों प्ले करूंगा। तो पहले चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानेब, उसके बाद आप सुनेंगे गीत। तनवीर अख्तर साहब, फ़ोन करने का शुक्रिया। आपके नाम करेंगे गीत और आपके साथ साथ चौधरी मनीष साहब चक्की वाले आपके नाम करेंगे और आपके साथ साथ चौधरी फरियाद साहब, अब्दुल करीम साहब राइजिंग हॉल से, चौधरी आसिफ रियासत साहब, जीत कौर भैना आपके नाम और चौधरी मनीष साहब चक्की वाले आपके नाम। तो डबल डबल करूंगा जनाब, मोहम्मद बशारत भाई, सोबत भाई लीड से और वाजिद भाई अडर्सफील्ड से, महमूद भाई, गुलाम भाई और नदीम मंसूर साहब, सोनिया बहन, तारिक जुल्फी साहब, मोहम्मद अकरम साहब और हीरा साहब, जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब और जनाब महबूब एलाई साहब और जनाब गजाला जबीन भैना आपके नाम भी करेंगे इस गीत को। और आपके साथ साथ दीगर जो दोस्त इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद जनाब सदाबहार पुराना गीत, उसके बाद आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा। और इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे और प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी करेंगे।
3: It's a classic hit. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
4: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
6: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

दोस्तों इसी के साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। उम्मीद रखता हूं आज का प्रोग्राम आप दोस्तों ने पसंद किया होगा। मुझे आमिर शहजाद को इजाजत दीजिएगा अगर अल्लाह ने चाहा और जिंदगी ने वफा की तो। आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11:25 पे होगी। तो आमिर शहजाद को इजाजत दीजिएगा। हमारी जन्म से खुदा हाफिज, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

0: मुताबिक गुसल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दैट्स ब्रेडफोर्ड 7230300।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा। इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

0: शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स 119-2121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: कुल्ला नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रैडफोर्ड 7230303

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Ladies and gentlemen,
5: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
6: Number one.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 That's Bradford 7230303.
3: You are listening to Sam.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, ब्रैडफोर्ड 7230300।
4: My favorite radio station, Sunrise Radio.
5: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
6: We love Sunrise Radio.
7: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
8: Brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
9: It's a classic hit. Flashback. Flashback as we go down memory lane where we

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: My favorite radio station, Sunrise Radio.
3: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: My favorite radio station, Sunrise Radio.
2: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

0: नफ्सेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Ladies and gentlemen,
3: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
4: Number one.
5: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
6: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
7: Oh, अरे कोई सांस तो छेड़ो। झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
8: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो,
1: अरे तू भी चुप हो जा।
0: खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
2: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
2: हाँ,

0: luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
0: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
0: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा। इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

अरे बनो मेरी जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, क्यों सताती है रे जाना, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, मेरी जान जाती है तू नहीं आती है, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ आ।